जुना जुना के भो आँखा खोल न मिच जुना जुना आँखा खोल न जुना आँखा खोल न

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम जी की बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठने। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त विचार?
1: के विचार? को फुलीवाली? म त बहिनी।
0: बहिनी त साली, तिमी नै त अनि मेरो फुलीवाली।